अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, राता

ज्ञानी रमित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्या राम जिला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलराव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीता राम। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम् भजामि ते।

दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी बिंद भंजनम।

व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रदयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यम्।

संग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति ओम। विश्वादश्चक्षुरोत विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरोत विश्वा

अश्रधाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मनुपासित लोकाय, नम साधुवाद निकषणाय,

भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम।

भाग्यायमलोत श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं,

हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान अपनी समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं। वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में मुझको ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है।

श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न देवताओं में उपासकों की श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। देव पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

अपने देश भारत की प्रमुख नदी गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली अनवरत अमृत धार है गंगा।

0: हमारी आस्था, हमारे जीवन, हमारी ऊर्जा और उल्लास की नदी है गंगा। पवित्रता और निर्मलता की जलधार है गंगा।
1: मानव के पंचकर्मों में एक है गंगा, शिव का रूप है, विष्णु का अंश है, ब्रह्म पोषित है गंगा।

0: गंगा वो नदी है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय है। महाकाल, मृत्युंजय, महासत्य, महादेव शिव की प्रिय है गंगा। उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व प्रदान करने वाली गंगा ही है। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं।
1: गंगा के किनारे ही महात्मा बुद्ध को बोधि गति प्राप्त होती है। अपने पांच शिष्य मिलते हैं। रामायण की कथाओं में गंगा कभी प्रभु राम और केवट के मिलन की साक्षी बनती है, तो महाभारत में शांतनु की पत्नी और भीष्म पितामह की माता बनकर सामने आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
0: गंगा अवतरण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन है। जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक संताप से गुजर रहे थे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया।
2: हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, गंगे।
1: मान्यता है कि गंगा ब्रह्म लोक से शिव की जटा में आई, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर उन्होंने अपनी जटाएं निचोड़ कर छोड़ी, जिससे अनेक धाराएं निकली। इनमें तीन प्रमुख हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। शिव ने अपनी जटा से एक धारा पृथ्वी पर उतारी, जिसे मंदाकिनी नदी मानते हैं। दूसरी धारा स्वर्ग चली गई, जिसका नाम अलकनंदा हुआ। यही धारा स्वर्ग से उतरकर बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है। तीसरी धारा भागीरथ के रथ के पीछे चलकर देव प्रयाग आई और भागीरथी कहलाई।
0: भागीरथी नाम की इस जलधारा का संगम देव प्रयाग के पास अलकनंदा से होता है। फिर आगे बढ़ती ये सरिता तीर्थ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी को समाहित करती है। यहीं से इस निर्मल जलधारा का नाम गंगा।

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ है। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है।

0: करो।
1: हे माँ गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे नर्मदा और सिंधु कावेरी, सभी कृपा करो और प्रकट हो इस जल में, जिससे मैं अपनी शुद्धि कर सकूं।
2: गंगा अवतरण की कथा का आधार भागीरथ ऋषि द्वारा अपने पूर्वज रघुकुल राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाना है, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे। सगर के पुत्र जहां ऋषि के शाप से भस्म हुए, वो पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर नामक स्थान है, जहां गंगा सागर की गोद में समा जाती है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है। पुराणों में पावन पतित पावनी पाप तारिणी गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। गंगा हमारी भारतीय सभ्यता का रूप है।
1: उत्तर भारत में हिममंडित हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। गंगा
2: उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है गंगा, और अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सबसे पहले बात गंगा नदी बेसिन के महत्व की बता रहे हैं जल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. पांड्या।
3: गंगा बेसिन जो है हमारा, वो देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसमें कि हमारी सबसे ज्यादा जनता भी वहाँ रहती है, और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट हमारे कंट्री का करीब करीब 43% जितना एरिया को वो कवर करता है, और उसका पानी जो है वो, जो कि अल्टीमेटली हम उसको, जिसको गंगा नदी के रूप में जानते हैं, उसमें फरक्का तक जाके मिलता है, और करीब करीब साल में एवरेज 525 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें एवरेज जाता है। गंगा जो है वो हमारी एक जीवनदायिनी नदी है, और उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आधार है, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी पानी की सुरक्षा के लिए।
1: हिमालय की पहाड़ी ढालों से नीचे उतरकर पावन तीर्थ नगरी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है।
2: हरिद्वार के आगे उत्तर प्रदेश

0: के मैदानी भागों में गंगा की धारा का स्वरूप बदलने लगता है। अपनी कई सहायक नदियों की जलराशि प्राप्त कर लेने से इसके जल प्रवाह में विशालता आती है।
1: गढ़ मुक्तेश्वर से दक्षिण पूर्व की दिशा में गतिमान होती गंगा की धारा संगम नगरी प्रयाग पहुंचती है, जहां गंगा, यमुना और अंतःसलिला सरस्वती का संगम स्थल है त्रिवेणी।

0: त्रिवेणी से अपनी सहभागिनी यमुना की विशाल जलराशि अपने में समेटकर गंगा पूर्व की दिशा में बहती हुई भारत की गौरवमय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध काशी नगरी पहुंचती है। काशी, जिसका आधुनिक रूप में प्रचलित नाम बनारस या वाराणसी है, संसार के प्राचीनतम सजीव नगरों में से एक है और गंगा तट पर बने अनगिनत घाटों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है।
1: माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए इस शिवप्रिया नगरी में गंगा का भव्य स्वागत होता है।

0: गंगा के तटों की महिमा और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्टर के आर शर्मा की बात याद आ गई। आप भी सुनिए।
1: हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य है वो गंगा से जुड़ा हो, जो जीवन यापन है वो उसमें समय समय पर गंगा जल का योगदान होता है। अगर आप देखें तो बच्चे के पैदा होने के बाद जब उसका यज्ञोपवीत किया जाता है तब भी गंगा जल की उपयोगिता होती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें गंगा जल की उपयोगिता होती है। सांकेतिक रूप में उसको हम लोग उपयोगिता में लाते हैं। आप देखेंगे कि जब मरने वाले होते हैं तब भी लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं ताकि उसके मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल की कुछ बूंदे चली जाएं तो उसके जीवन पवित्र हो जाए। साथ में ये भी आप देखेंगे कि उसी गंगा के तट पर लोगों की इच्छा होती है कि हमारे अंतिम संस्कार भी उसी गंगा के किनारे हो। तो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा की महत्ता हिंदू समाज में आप पाएंगे।
2: 3 लोक से न्यारी काशी, ये कहावत सदियों से प्रचलित है जो काशी नगरी के न्यारेपन को उजागर करती है। गंगा के महत्व को बखान करती हुई पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा शर्मा कहती हैं,
3: गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके कारण हम इस नदी को एक पवित्र और अमृत तुल्य नदी मानते हैं। हम अपनी जो जर्नी है उसको अगर हम ऋषिकेश शुरू करते हैं तो वहीं से ये गंगा जो है एक तीर्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। यद्यपि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ तो तीर्थ है ही, गोमुख तीर्थ है ही, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक जन साधारण इस तक पहुँचा है उसको हम ऋषिकेश से मानते हैं। जहाँ पर ये मैदानी भाग में आती है, यद्यपि इसकी जो धारा है बड़ी तीव्र गति से बहती है, लेकिन इसके किनारे मंदिर आश्रम ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वेद ऋचाएं गाई हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से इसकी महत्ता जो है वो शुरू होती है। हमारे जीवन में ये इस कदर रच बस गई है कि हर भारतीय का ये सपना होता है कि जीवन में वो गंगा के किनारे जाए, उसमें स्नान करे और उसको ऐसा विश्वास है कि उसके जितने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है।
2: मंदिर मस्जिद पंडे पुजारियों के इस शहर में विभिन्न संस्कृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का दिव्य स्थान है तो दूसरी ओर कबीर चौरा और संत तुलसीदास का तुलसी घाट। नृत्य विशारद बिरजू महाराज हों या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, महान साहित्यकार भारतेंदु और महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी नगरी के निधि रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यही गंगा तट पर स्थित है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज सुबह अपनी शहनाई गंगा जल से धोते थे।

0: उन्हें गंगा बहुत प्रिय थी। जब भी बनारस में होते थे तो गंगा को अपनी शहनाई सुनाना नहीं भूलते थे।
1: भारतीय साहित्य भी गंगा के स्तुतिगान से अछूता नहीं रहा है। कई रचनाएं गंगा को ही समर्पित की गई हैं। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी उनमें से एक है।
2: समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तं महेश्वर्यम लीला जनित जगत खंड परशो।
0: तीर्थ नगरी काशी के मनोरम घाटों से आगे प्रवाहित होती हुई गंगा धारा मालवीय पुल से आगे मुगल सराय होती हुई बिहार प्रदेश में बक्सर पहुंचती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर स्वयंवर में जाने के लिए यहीं से गंगा को पार किया था, जो अब रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है।

0: बक्सर से आगे चलकर गंगा पहुंचती है पटना, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। मंद मंद गति से पूरब की ओर प्रवाहित होती गंगा की धारा पटना पहुंचने के पहले सरयू और सोण नदी की जलधाराओं को भी अपने में समेट लेती है।
1: दीपावली के 6 दिन बाद जब छठ पूजा मनाई जाती है तो यहाँ गंगा के घाटों पर आस्था और विश्वास की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है।
2: छठ की पूजा में गंगा के अंदर हम खड़े होकर पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो गंगा मैया से भी मांगा जाता है, केवल सूर्य से नहीं।
1: आप हैं प्रसिद्ध लेखिका और संपादक डॉक्टर मृदुला सिन्हा।
2: मांग होती है सब चीज की, और उसमें अन्न है, जल है, धन है, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन गंगा से भी मांगते हैं और सूर्य से भी मांगते हैं। वहाँ दोनों को समान आसन पर बैठा दिया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि गंगा को लोक जीवन से और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सही बात तो यह है कि गंगा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जो इसकी अविरल धार है, और वो बहती रही है, बहती रहेगी।

0: गंगा परिवहन का जरिया रही है, अब भी है। गंगा के इस पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री दुर्गादास गुप्ता।
1: नेशनल वाटरवे की तरह है, आज से नहीं हजारों साल से। छोटे नाव, बड़े नाव, सब पे चल करके लोग जाते आते थे। उनकी यात्राएं हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, माल ढोया जाता था। उसका आज भी उदाहरण ये है कि छोटे छोटे इस ज़माने में भी बजरे पे सामान लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन जगह जगह चुके इतना बॉटल नेक आ गया है नदी में कि अब वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं ये कहूँ कि अगर रेलवे के ऊपर, सड़क के ऊपर से अगर आपको भीड़ कम करनी है तो एक विकल्प के रूप में आपको देखना चाहिए कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं भारत को या भारत के इस हिस्से को, तो उनको बजाय पैलेस ऑन व्हील्स के या राजधानी के, वो गंगा को इस तरह से विकसित करना चाहिए ये यात्रा करने का कि लोग उसको, उसका सुखद अनुभव ले सकें और लोग समझ सकें कि हमारी परिपाटी क्या है, हमारी परंपरा क्या रही है, गंगा का महत्व क्या है इस बारे में। क्योंकि जब तक हम इसको हरिद्वार से लेकर के और नीचे हुगली तक नहीं जाते हैं,

0: तो हम गंगा कितनी महान है, गंगा की क्या आवश्यकता है, गंगा कैसी थी, कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये हम उस दृष्टिकोण को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। और जहाँ तक गंगा के सफाई की बात है, गंगा जब तक साफ नहीं होगी तो परिवहन उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। और नई टेक्नोलॉजी से गंगा को साफ करना होगा, ड्रेजिंग होनी चाहिए, फ्लोरा फौना को बचाना चाहिए, और उसके ऊपर परिवहन जो हो, पैसा जो खर्च हो, उससे कमाई हो, उसका एक अलग कोष बने और गंगा को और दूसरी नदियों को धीरे धीरे करके उस कोष से जोड़ देना चाहिए।
1: नदियों को जोड़ने और उन्हें परिवहन का एक माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गंगा के बारे में श्री दुर्गादास गुप्ता आगे कहते हैं,
0: हजारों हजार साल से ये वाटर हाईवे था और रही है, जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर गंगा को समझना है, गंगा के बारे में बात करनी है, गंगा की महत्ता समझनी है आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकल करके, तो सबसे पहले एकेडमिक वर्ल्ड को ध्यान देना पड़ेगा कि गंगा के ऊपर या नदियों के ऊपर स्कूल ऑफ स्टडीज़ बने। काफ़ी जियोलॉजिकल डेटा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो स्टडी जो इन डेप्थ स्टडी, जो सघन अध्ययन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है।

पटना शहर गंगा तट के दाएं किनारे पर दीघा घाट से लेकर पूर्व में फतुहा तक फैला है। इसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त और महान गुरु चाणक्य की कर्म भूमि रहने का संयोग इसी पाटलिपुत्र को मिला। चंडाशोक से अशोक बना मगध का सम्राट यहीं गंगा तट से अहिंसा और करुणा का संदेश दे गया।

0: सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में आकर मिलती है नेपाल में हिमालय से निकलकर आने वाली गंडक नदी। यही वो स्थान है जहां हर साल विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
1: तो हर महिमा आगमा अपार है गंगा मैया।
0: अनेक छोटी बड़ी नदियों की विशाल जलराशि लेकर गंगा अपने स्वरूप का विस्तार करती है और पहुंचती है सुल्तानगंज। यहाँ की विशेषता और गंगा के बारे में बताते हुए पूर्व राजदूत और सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस कहते हैं,
2: भागलपुर जिला में गंगा का महत्व सुल्तानगंज के गंगा से है। गंगा जब चलती है हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो दो जगह ही ऐसी जगह है जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, एक तो बनारस में और एक सुल्तानगंज में। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग वहाँ यदि स्नान कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें असीम शांति प्राप्त हो गई। अभी भी हर साल लाखों लोग सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सुल्तानगंज का पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज का पहले नाम गंगा धाम था। औरंगजेब ने इसका नाम बदल कर सुल्तानगंज कर दिया, जहां उसके फौजी छावनी डालते थे और वहीं से वो लोग बंगाल आसाम पर कूच करते थे। सुल्तानगंज में ही लोग कहते हैं अजगबीनाथ मंदिर में जहनु मुनि रहा करते थे, जिनके नाम पर गंगा का नाम वहां से जहनवी पड़ा। एक बार किंवदंती है कि जहनु मुनि ने गंगा को पी लिया क्योंकि गंगा बहुत किलोल करती थी। भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जहनु मुनि ने

0: यदि सुल्तानगंज की गंगा का जल वहाँ नहीं पहुँचे। सुल्तानगंज और देवघर का संबंध बहुत ही निकटतम है।
1: संस्कृति और विधा वैभव का केंद्र भागलपुर से आगे पूर्व की ओर स्थित है फरक्का बराज यानी गंगा नदी पर बना विशाल जल अवरोधक। एक समझौते के अनुसार गंगा जल का एक उचित हिस्सा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाता है।
2: फरक्का से आगे गंगा की शेष धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचती है। यहां इसके किनारे स्थित है माँ काली का प्राचीन और विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर, जो रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी रहा है।
1: पर्वतराज हिमालय से निकलकर लगभग 2,500 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करने के बाद गंगा की धारा पहुंचती है डायमंड हार्बर, जिसके आगे बंगाल की खाड़ी का लहराता सागर और सुंदरी वृक्ष वाले सुंदर वन के जंगल फैले हैं।
2: गंगा कई हिस्सों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर पहुँचती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था।
1: इस स्थान का बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी रही है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही है। उसकी अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय अस्तित्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: स्वर्ग से धरती पर उतरकर सभी को अपने आंचल में समेटती, दोष मुक्त करती, अभय दान देती गंगा सागर से मिलकर पाताल लोक चली जाती है और त्रिलोक गामिनी बन जाती है। जो मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है।
1: सदियों से भारत की धरती पर बहती हुई गंगा इस देश की पहचान बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि वही गंगा अब अपनी पहचान खोती जा रही है।

0: गंगा थक रही है, मर रही है।
1: गंगा बहती हो क्यों?
0: अपनी अज्ञानता, लालच और स्वार्थ से हमने इसे इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: युद्ध में विष्णु जी को परास्त कर उन्हें लक्ष्मी जी समेत अपना अतिथि बना लिया। नारद मुनि ने जलंधर का धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसके मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा की। बुद्धि भ्रष्ट जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। प्रस्तुत है आगे की कथा, जिसके रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, प्रतीत होता है अवश्य ही कोई रोचक घटना घटने जा रही है।
2: हाँ विप्रवर शौनक जी, एक तो महादेवी पार्वती के प्रति किसी दैत्य की आसक्ति और फिर राहु का दूत बनकर आना।
1: वो राहु जो अमृत से वंचित होने के कारण पहले ही देवताओं से रुष्ट था, फिर क्या हुआ सूत जी?
2: जलंधर की आज्ञा से लैस देवताओं के पूर्व कृत्यों का प्रतिशोध लेने की भावना से परिपूर्ण राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा।
3: अरे ये कौन उद्दंड है, कैसे प्रभु के सभा भवन में घुसा चला जा रहा है?
4: रुको, कौन हो तुम? ऐसे बिना आज्ञा भवन में कैसे प्रवेश कर रहे हो?
5: अरे वृषभ, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं महादैत्यराज जलंधर का दूत राहु हूं। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा मार्ग छोड़।
4: नहीं, नहीं, तुम ऐसे भीतर नहीं जा सकते।
5: रोक सके तो रोक ले मेरा मार्ग।
4: शिवगणों, इस दूत को बंदी बना लो।
5: मुझे राहु को बंदी बनाएंगे? हो गए ना सब धराशायी। भीतर चलता हूं, देवों के भी देव शिव को मेरा दैत्यराज जलंधर के दूत राहु का प्रणाम, परम पिता तथा श्री विष्णु हरे को भी मेरा प्रणाम।
6: आओ राहु, तो इस बार तुम जलंधर के दूत बनकर आए हो, मंतव्य बताओ राहु।
5: मेरे स्वामी जलंधर के पराक्रम तथा ऐश्वर्य से सभी परिचित हैं। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो। बस उन्हें आवश्यकता है तो मात्र एक ही वस्तु की।
6: कहो राहु।
5: आपकी भार्या सर्वांग सुंदरी पार्वती की।
6: क्या
5: आप उन्हें मेरे स्वामी को उपहार स्वरूप दे दें?
6: राहु, प्रथम बात तो यह है कि देवी पार्वती कोई वस्तु नहीं है, वो हमारी पत्नी है, और पत्नी किसी के मांगने पर भी उपहार में नहीं दी जा सकती है।
5: परंतु छीनी तो जा सकती है।
6: पति पत्नी का संबंध आजीवन का होता है, मात्र मृत्यु ही पति को पत्नी से और पत्नी को पति से छीन सकती है। क्या तुम्हारे स्वामी जलंधर ये भूल गए कि हम मृत्यु से परे हैं?
5: मृत्यु से परे तो मेरे स्वामी जलंधर भी हैं देव, उनकी धर्म परायणता मृत्यु के विरुद्ध उनका कवच है, जिसे आप भी नहीं भेद सकते।
6: क्या तुम्हारा धर्म परायण स्वामी ये नहीं जानता कि किसी पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही धर्म क्षीण हो जाता है? वो तो पर स्त्री की मांग कर रहा है।
5: वो मांग नहीं कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं।
6: आदेश? आदेश? शिव को आदेश?
3: अरे कमलनयन, महाप्रभु ने

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर द्वारा अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में डाले जाने पर दैत्य जलंधर की उत्पत्ति हुई। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर शीघ्र ही दैत्यराज बन बैठा। वो इतना बड़ा धर्म अनुयायी था कि स्वयं शिवजी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। जलंधर ने

0: अपनी एड़ी से धरती फोड़कर ये किस विकराल जीव को उत्पन्न किया है? इसका मुख तो सिंह के समान है।
1: विधात, मानो दूसरा नृसिंह पैदा हो गया हो।
2: आदेश महाप्रभो, स्वकीर्ति मुख, इस राहु का भक्षण करो।
3: नंदीश्वर, देखो तो राहु कैसा भैसे इधर उधर भाग रहा है।
4: हाँ, सुकीर्ति मुख ने उसकी ग्रीवा पकड़ ली है।
3: हाँ, रक्षा रक्षा, मैं एक दूत हूँ, दूत को कुछ भी कहने का अभेदान प्राप्त होता है। ये मर्यादा आप ही द्वारा स्थापित की गई है, देवों के देव, रक्षा रक्षा।
2: स्वकीर्ति मुख, छोड़ दो इस दुष्ट प्राणी को, जो आज्ञा महादेव। स्वकीर्ति मुख, हम तुम्हारे आदेश पालन से प्रसन्न हुए, आज से तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे और हमारे द्वार पर स्थित रहोगे। जैसे हम पूज्य हैं, तुम भी पूज्य होगे।
5: मैं धन्य हुआ देवाधिदेव,
2: हमने तुमको मुक्त किया राहु, हम आज्ञा पालकों से प्रसन्न रहते हैं। तुम भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, दूत का यही कार्य होता है, निर्भय और स्पष्ट रूप से अपने स्वामी का उद्देश्य बताना।
3: जी महादेव।
2: परंतु दूत का कार्य यह भी होता है कि वो अपने स्वामी को भी दूसरी ओर का संदेश स्पष्ट शब्दों में दे।
3: देवाधिदेव, आपका संदेश क्या है?
2: जाओ, कह दो अपने स्वामी जलंधर से, हमें उसकी मांग स्वीकार नहीं है, उससे जो संभव बन पड़े वो चेष्टा कर ले, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे।
3: जो आज्ञा।
2: नंदीश्वर।
4: आज्ञा महाप्रभो।
2: हमारे वीर पुत्रों गणेश और कार्तिके, वीरभद्र तथा महाकाली के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हो।
6: महादेव शिव शंकर की
7: जय।
6: महादेव शिव शंकर की
7: जय।
0: विष्णु, अरे ये क्या, जलंधर ने पुत्र कार्तिकेय को अपने अस्त्र वार से मूर्छित कर दिया है।
1: अरे विधात, क्रोध में आकर महाप्रभु ने जलंधर पर वार किया है, परंतु जलंधर पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।
0: ये मुनि नारद जलंधर के पास क्यों जा रहे हैं?
8: नारायण नारायण नारायण, दैत्यराज, शिव जी के प्रहारों से तुम आहत हो गए हो।
9: हाँ।
8: मुझे लगता है तुम्हारा कुछ विश्राम कर लेना आवश्यक है।
9: परंतु युद्ध कैसे रोका जा सकता है मुने नारद?
8: नारायण नारायण, तुम मायावी हो, अपनी गंधर्वी माया से युद्ध स्थल को मनोरंजन स्थल में परिवर्तित कर दो, सब मोहित हो उठेंगे और युद्ध रुक जाएगा।
9: आपका सुझाव उत्तम है।
8: नारायण नारायण,

0: है? अरे विदात, ये क्या? सभी सभी दैत्य कहाँ लुप्त हो गए? हा? उनके स्थान पर गंधर्व अप्सराएं तथा किन्नर कैसे नर्तन करने लगे? हाँ विदात, स्वयं देवाधिदेव ने युद्ध समाप्त कर दिया है, वे भी मोहित से नर्तन देखने में मग्न हो गए हैं।
1: ये अवश्य किसी की मायावी शक्ति का प्रभाव है। भारत मुने जलंधर से क्या वार्तालाप कर रहे हैं?
0: संभवतः वो देवताओं की विजय प्रशस्त करने के लिए कोई प्रपंच रच रहे हैं।
2: नारायण नारायण, दैत्यराज जलंधर, सभी देवता नृत्य गान में मग्न हैं। यही समय है तुम शिव का रूप धारण करके पार्वती का अपहरण करके ले आओ।
3: हाँ, परंतु इससे क्या होगा मुने नारद?
2: नारायण नारायण जलंधर, शिव पत्नी जब तुम्हारे पास होंगी तो उन्हें मुक्त करने के लिए तुम शिवजी से कुछ भी मांग सकते हो, अमरत्व भी। और हाँ, और फिर दैत्यराज, देवी पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तो तुम ये युद्ध कर रहे हो ना?
3: उस सुंदरी का वर्ण करने की इच्छा क्षण प्रतिक्षण तीव्र होती जा रही है मुने नारद।
2: नारायण नारायण, तो जाओ, तुरंत जाओ। इस समय देवी पार्वती की रक्षा हेतु कोई नहीं है। हाँ,
3: जो आज्ञा नारद मुने।
2: नारायण नारायण।
4: पार्वती, देवी पार्वती।
5: अरे देवाधिदेव तो आ भी गए। मुख्य तेज से प्रतीत हो रहा है कि इन्हें विजयश्री प्राप्त हुई है। स्वागत है स्वामी, विजयश्री पर आपका अभिनंदन है।
4: पार्वती, हमें भला कौन पराजित कर सकता है? वो कथित दैत्यराज जलंधर तो हमारे एक मुष्टि प्रहार से ही भूमि में समा गया।
5: ये तो देवाधिदेव की भाषा नहीं है। उन्होंने कभी अपने किसी कृत्य पर इतना अभिमान नहीं किया।
4: किन विचारों में लीन हो गई पार्वती? अपने विजयी पति का आलिंगन नहीं करोगी?
5: ये महाप्रभु हो ही नहीं सकते, ये अवश्य किसी की माया है।
4: प्रिये, तुम मौन क्यों हो? आओ हमारे समीप आओ।
5: देवाधिदेव, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, अन्य देवगण तथा आपके अपने गण कहाँ हैं?
4: वे हमारी विजय का आनंद मना रहे हैं।
5: ये तो कदापि महादेव की भाषा नहीं है। वे आनंद के स्थान पर उत्सव कहते हैं। हे छली, हम जान गए हैं तू महाप्रभु की परछाई भी नहीं हो सकता। कौन है तू? अपने असली रूप में आ।
3: बहुत बहुत चतुर हो तुम पार्वती, पहचान ही लिया कि हम शिव नहीं हैं।
5: अरे मूर्ख जलंधर, एक पतिव्रता गंध मात्र से अपने पति को पहचान लेती है। तूने भ्रमित करने का प्रयास भी किया तो किसे? सतीत्व की परिभाषा को?
3: इतने भारी शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते पार्वती। हम तो मात्र इतना जानते हैं कि पुरुष शक्ति के समक्ष स्त्री उतनी ही असहाय होती है जितना कि एक मेमना सिंह के समक्ष होता है।
5: अच्छा, अरे दुर्बुद्धि, तो तू ये समझता है कि अकेली स्त्री असहाय होती है? तो देख इस अकेली असहाय स्त्री का चमत्कार।
3: अरे ये कहाँ गई? कहाँ गई पार्वती? अरे कहाँ विलुप्त हो गई पार्वती? ये तो अनर्थ हो गया। नारद ने मुझे भ्रमित कर
0: मुझे क्या करवा डाला और मैं मूर्ख राज शुक्राचार्य के बताए धर्म मार्ग को छोड़कर ये क्या कर बैठा। मुझे महादेवी से क्षमा याचना करनी होगी, क्षमा याचना करनी होगी, परंतु

0: अरे महादेवी पार्वती, आप यहाँ युद्धस्थल में?
1: ब्रह्मदेव, जब कोई असुर अपने माया जाल से युद्ध स्थल को क्रीड़ागार में परिवर्तित कर डाले तथा अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करे तो देवी को युद्ध स्थल में उतरना ही पड़ता है।
0: देवी, आप क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं। ये तो देवाधिदेव द्वारा निर्धारित काल चक्र की ही गति है। इसे रोकना स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करना है। आप आदेश दें, जलंधर को कैसे दंडित किया जाए?
1: विष्णु हरे, असुर जलंधर ने मेरे स्वामी का रूप धारण करके मेरे शील भंग का प्रयास किया है। चाहिए आप उसकी पत्नी वृंदा का शील भंग कीजिए।
0: महादेवी, आपने ये क्या आज्ञा दे डाली मुझे?
1: श्री विष्णु, देवाधिदेव ने आपको जन्म दिया है, वे आपके पिता हुए, मैं उनकी पत्नी हूँ। इस नाते मैं आपकी माता स्वरूप हुई। चाहिए माता की आज्ञा का पालन कीजिए।
0: परंतु माते, मेरा धर्म?
2: विष्णुदेव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र गणेश ने तो अपना सिर तक कटवा दिया था।
0: हाँ? ये क्या ब्रह्मदेव, वेदों और धर्म के ज्ञाता होकर भी आप मुझे ये घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं?
2: जलंधर का अंत जनकल्याण का कार्य है, यही आपके माता पिता की अभिलाषा है। और जनकल्याण हेतु किया गया कोई भी कार्य कुकृत्य नहीं हो सकता।
1: श्री विष्णु, ये एक पत्नी का प्रतिशोध नहीं है, एक पत्नी का पतिव्रत धर्म है, जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, जो मेरे स्वामी के विजय के मार्ग में अवरोध बना हुआ है। देवताओं की विजय के लिए उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ा जाना आवश्यक है। जाइए, हमारे आदेश का पालन कीजिए।
0: देवी, परमपिता, महादेवी तो आदेश देकर लुप्त हो गईं, परंतु मेरा हृदय, मेरा मानस ऐसा करना स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
2: देवाज्ञा की पूर्ति भी हमारा धर्म है श्रीहरि।
0: स्वप्न, हाँ, स्वप्न को माध्यम बनाता हूं।
3: ये कैसा मादक स्पर्श है, मेरा अंग अंग रोमांचित हो उठा है। क्या स्वामी लौट आए हैं? अरे, मेरे नेत्र क्यों नहीं खुल रहे? परंतु आश्चर्य की बात है, मैं बंद नेत्रों से भी स्वामी जलंधर के दर्शन कर रही हूँ। वे मुस्कुराते हुए मुझे आलिंगन बद्ध करने को बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, यह तो मेरे स्वामी का रूप बदल रहा है। कौन है यह दिव्य पुरुष, और मैं क्यों आकृष्ट हुई जा रही हूँ उनकी ओर? नहीं नहीं, इस कल्पना मात्र से ही मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया है। स्वामी जलंधर में भ्रष्ट हो गई, मैं भ्रष्ट हो गई। हाँ? ये क्या, ये तो स्वप्न था। स्वप्न में ही सही, मैं भ्रष्ट हो गई। कहीं ये किसी अनिष्ट का संकेत

0: तो नहीं? चलूं, बाहर चलूं, किसी से पूछूं। ये क्या, भवन के बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। किससे पूछूं, किससे पूछूं? हाँ, वो दो मुनि चले आ रहे हैं, उनसे पूछती हूँ। मुनिवर, रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से। मुनिवर
1: लीजिए। मुनिवर की हुंकार से राक्षस भाग गए, परंतु देवी ये क्या, आपने भयभीत होकर मुनिवर का बाहू क्यों पकड़ लिया?
0: अनर्थ, अब तो वास्तव में अनर्थ हो गया। पहले स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श और अब मूर्खतावश इन पर पुरुष मुनि का स्पर्श, मैं क्या करूं?
1: क्या बात है देवी, आप इतने उद्विग्न क्यों हैं?
0: मुनिवर, एक विभत्स स्वप्न देखकर अपने स्वामी जलंधर का कुशल क्षेम जानने बाहर निकली थी और मुझसे ये पाप हो गया। मैंने पर पुरुष को वास्तव में छू लिया। अरे अरे, यही मुनि तो दिव्य पुरुष के रूप

0: कैसे उपस्थित हो गए? मुनि उन्हें मौन भाषा में क्या आदेश दे रहे हैं? वानर तो आकाश में उड़ गए। आप बोलते क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है?
1: देवी, मुनिवर मौनी बाबा हैं। क्या हो रहा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा।
0: नहीं, ये वानर तो मेरे पति जलंधर का कटा हुआ शीश लेकर आए हैं। मैं जानती थी कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग होते ही मेरे पति की शक्ति क्षीण पड़ जाएगी, शिव के हाथों उनका वध हो जाएगा। अरे, कौन हो तुम दोनों मुनि? ये क्या माया रची है?
2: देवी वृंदा, मैं विष्णु हूँ तथा देवी पार्वती के आदेश से ही ये माया रची गई थी।
0: महादेवी के आदेश पर? परंतु क्यों?
2: आपके पति जलंधर ने कामवश महादेवी के शील का अपमान करने का प्रयास किया था।
0: एक पति के कुकृत्य का दंड उसकी पत्नी को क्यों?
3: वृंदा, देवाधिदेव के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारे पति के कुकृत्य का फल ही उसे मिला है।
0: परंतु महादेवी, इस सब के लिए मेरा शील भंग करने की क्या आवश्यकता थी?
3: नहीं वृंदे, तुम अब भी उतनी ही पवित्र हो जितनी पहले थी। किसी ने तुम्हारा स्पर्श तक नहीं किया है।
0: परंतु मैंने मुनि वेश में श्री विष्णु का स्पर्श किया, स्वप्न में उनकी ओर आकृष्ट हुई।
4: पुत्री वृंदे, वो मात्र तुम्हारी मानसिक स्थिति ही थी। उसे भी हमारी विवशता के कारण उत्पन्न किया गया था। शरीर से तुम अब भी स्वच्छ तथा निर्मल हो।
0: क्या परमेश्वर भी विवश होते हैं?
4: अवश्य होते हैं। हमारी पहली विवशता होती है भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुखी बनाना, और इस कारण ही हम अपनी प्रजा को दुख पहुंचाने वालों का अंत करने को विवश हो जाते हैं।
5: और देवी वृंदा, हमारी दूसरी व्यवस्था होती है अपने ही वरदानी के आतंक को समाप्त करने के लिए अपने ही दिए वरदान की काट करना।
0: परमपिता, मेरा आपसे एक अनुरोध है।
5: कहो वृंदे।
0: मेरे पति की अंत्येष्टि का आयोजन आप कीजिए ताकि उनकी आत्मा पवित्र हो सके।
5: तथास्तु वृंदा। शिवगणों, व्यवस्था करो।
6: जो आज्ञा देव।
5: दैत्यराज जलंधर का शरीर आदर पूर्वक चिता पर रख दो। अब अग्नि प्रज्वलित करो।
0: हे देवगण, किसी भी कारण से, किसी भी उपाय से ही सही, श्री विष्णु हरि ने एक पतिव्रता को मानसिक विक्षोभ पहुंचाया है। वे उसके पति की मृत्यु का निमित्त बने हैं। अतः श्री विष्णु, मैं वृंदा आपको शाप देती हूँ। अपनी मायावी शक्ति से जो दो राक्षस आपने मुझे दिखाए थे, वे किसी समय आपकी पत्नी का हरण करेंगे। पत्नी विरह में दुखी आपको वानरों की सहायता लेनी होगी, और जो मुनि आपके साथ था वे आपका भ्राता बनकर आपके साथ वन में विचरेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
7: महामुनि शौनक जी, ऐसा श्राप देकर वृंदा ने अपनी देहाहुति दे डाली, और उसका ये श्राप श्री विष्णु भगवान के राम रूप में अवतार लेने के समय पूर्ण भी हुआ।
8: महाभाग सूत जी, जलंधर की मृत्यु से शिव चालीसा का एक और दोहा भी तो पूर्ण हुआ।
7: वो कौन सा शौनक जी?
8: आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा।
7: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी की आराधना में ग्रंथ के ग्रंथ लिखे और बांचे गए हैं।

0: कितने ही लेखकों भक्तों ने आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक शिव महिमा का गुणगान अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से किया है।
1: महाभाग सूत जी, ये तो आप उचित ही कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो शिव महिमा से प्रभावित ना हुआ हो। अब आगे की शिव महिमा भी तो सुनाइए।
0: अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु तनिक विश्राम के पश्चात।
2: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें से 25वें अध्याय तक से लिया था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: भक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम, सीता, लक्ष्मण व भक्तगण स्नान, ध्यान, पूजन, भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री के कहीं अर्पियो न थी, तो पण मुझ ऊपर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसार मा कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

काल रात्री देवी भागवतना पांचमा स्कंदमा तेवीसमा अध्यायमा बताव्याप्रमाणे पार्वती देवीना देह शरीरना कोशमाथी निकळेला होवाती ए अंबिका देवीने कौशिकी एवं नाम आपवामां आव्युं छे। कौशिकी के अंबिका पार्वतीजीना शरीरमांथी निकळी जता पछी पार्वती ए भयंकर श्याम कृष्ण काळा वर्णवाळा थया एथी ते कालिका कहवाया। एमना आ महाभयानक स्वरूपना दर्शनथी दैत्योने अपार भय थयो पण देवोने माटे ए अपार हर्षदायी बन्या। એ જ દેવી એ કાલરાત્રી બન્યા છે એમ દેવી ભાગવત કહે છે। ત્યાં કહ્યું છે તેમ

किंवा वृद्ध दिखाता तो फैलायल एवं वितत आकृति वाला जंगल जेव जमनु मस्तक छे के जे अग्नि ज्वालाओं थी लपेटायेलू हो एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता ए कालरात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।